0: इतनी सेवा प्रवान करनी जी, भुल चुक माफ करना, गज के फतेह बुलानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी बड़े अदब सत्कार सहित हफ्तावारी सिमरन साधना विच हाजरी भर रहे सी। निष्काम कीर्तनी जथे दा बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु रहमत करने इसे तरह सेवावां लैंदे रहण। सो हुण समा होया है इतिहास दी कथा दा। चल रही प्राचीन पंथ प्रकाश दी लड़ीवार कथा सरवण करवाउणगे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहिब भाई गुरमेल सिंह जी दमदमी टकसाल वाले। आओ भाई साहब होरां पासों कथा विचार सरवण करिए। आप संगत नूं पहलां वी बेनती कीती जा रही है कि 6 अते 7 सितंबर नूं शाम 7 तों 8:30 बजे तक पंथ प्रसिद्ध विद्वान भाई साहिब भाई पिंदरपाल सिंह जी लुधियाणे वाले आप संगत नूं गुरमत विचारां द्वारा गुरु चरणां नाल जोड़नगे। आप जी ने दोनों दिन हाजरियां भर के लाहे लैणे। इस तों उपरंत 8 सितंबर तों 12 सितंबर तक शब्द चौंकी होवेगी। जिस तरह आप जी जानते हो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश नूं मुख रखदे होया हर साल शब्द चौंकी की जाती है। 8 तों 12 तक शब्द चौंकी होवेगी। 10 सितंबर नूं मुख दरबार हाल विच अखंड पाठ साहब आरंभ होणगे जिन्हां दे 12 नूं भोग पैणगे। सो आप जी ने सारे समागमां विच वध चढ़ के हिस्सा लैके गुरु कीआं खुशियां दे पात्र बनण दी कोशिश करनी है। सारी संगत नूं इह बेनती है, बेनतियां प्रवान करनियां। आओ इतिहास दी कथा सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहिगुरु प्यार विच बोलो, भिज के सिमरन कीता, होर आनंद, होर आनंद।

प्यारे सतगुरु, न्यारे सतगुरु, दतारे सतगुरु, सिरजन हारे सतगुरु, पालन हारे, बख्शन हारे सतगुरु, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी। प्यारे सतगुरु जी, आप जी अपने तख्तों ते विराजमान बहुत प्यारे लग रहे हो। शुकराना आप जिया का जो आप जी संगतां नूं दासरियां नूं दर्शन बख्श रहे हो। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी नूं आओ आपां फिर तो नमस्कारां करिए, अपनियां हाजरियां लवाइए प्यारे सतगुरु जी दे चरणां विच।

घर बैठे गुरु ते आयो गुरपुरै सच कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुण मेहरबाना आनंद सुख कल्याण मंगल सिंह घर आए कर इस नाना रहा साची गुरबडिया ताकी कीमत कहन ना जाई सिर साहा पातशाह गुर भेटत मन ओ महा सगल प्राचत लाथे मिल साध संगत का साथे गुण निदान हर नामा

देग तेग पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे ग्रंथ बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

फिर तप्रभे आया परया तौ शरण आए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। मैं गरीब सच टेक तू

सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शन मेरा मन धीरे सगल गुणा के दाते स्वामी बिना सुनो एक दीना देहो दर्श नानक बलिहारी जियाड़ा बाल बाल कीना आस प्यासी पिर कैताई ज्यो चात्रिक बूंदेरे कहो नानक जियाड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पहिला ते तुकी आसा मनसा बंदनी पाई करम धर्म बंदकारी

जति के सूर सुरार्दन सुद सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दाम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत तार सबै सो बिचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर्जान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे बीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पाल ही पाल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेसर बिसन सची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर ना देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहाँ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पात साहि दसवी कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोह रक्षा निज कर दै करिय सब बैरन कवाज संघरिय पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे

माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करहो किछ मेहर उपावहो, डुबदे पत्थर तारे, जियड़ा अगन बराबर तपै, पीतर वगै काती, प्रणवत नानक हुकम पछाणै, सुख होवै दिन राती, सुकहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसहु कुरसहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते साह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साह, सिर साहां दै साहो, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वे साहो।

पौड़ी ना उतर निरंकार है, ना ले नरक ना जाइए। जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाइए, जे लोड़े चंगा अपने।

बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच

पौड़ी दान महिंडा तली खाक जमला तो मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िया हो एक मना लाख दिया फलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया।

सिद्ध साधक आसा सह गुर अमरदास परसिय ध्यान लइए पहा मुक्क। गुर अमरदास परसिय पहा लब गह चुके।

सुनी, गज के बोलो सुनी सच्ची बाणी। जो जुगो जुग गुरु की बाणी अटल, बाणी सरवण करन वास्ते ते तुसी जिवें पतंगा दीवे दी लाट ते उड़दा आउंदा पर ओह ते अगो खंभ साड़ दिंदा है, तुसी दौड़े आउंदे हो जदो गुरु चरणा च आ जांदे हो गुरु तुहानू अपनी गोद विच लै लैंदा है, गुरु ये बख्शिश कर दिंदा है। भौरा किधरे दूरों आउंदा कूं कूं कूं कूं करदा आउंदा है, वह कमल के फुल से बैठ जाता, उन्हूं रास्ता जरूर मिलता है, पर वह बैठा बैठा सहजे सहजे की होंदा सूर छिप जाता है, वह कमल का फुल मुंदिया जाता, वह बेचारे भौरे दी विच ही मौत हो जाती है। पर जिस गुरु को आउंदे हो ना, जदों इहदी हजूरी अंदर आउंदे मेरे गुरु का बिरदा है, तो सने बहुत बार

गुरु सवारी संगत जी तुसीं बहुत वड्डियां भागां वाले हो, करमां वाले हो, कदम कदम चल के मेरियां भैणां मावां वीर बजुर्ग माई भाई संगती रूप विच आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बारगाह विच रोजाना दे नेमी प्रेमी पहुंचण दा जतन करदे हो। सतगुरु जी होर भला उद्दम बख्शिश करन, साडे सारियां दी हाजरी सचे पातशाह कृपालू दा तार जी प्रवान कर लैन, अमृत बाणी दी सांझ पाउंदिया बेअंत भुल्लां दीआं माफ़ियां, लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपै मेले। कल आपां इक बचन रोजाना तुहानूं बेनती कीती सी भी बचन गुरु अगे क्या करना अरदास करिया करनी है, वह सारे आखण दा जतन करियो। सरबत दा चेता रखना, कल भी कहना आपां रोजाना कहना है, बुलंद आवाज विच आख्या करो, फिर बेनती करदा सरबत दा, फिर आखो सरबत दा, फिर आखो सरबत दा, नानक नाम तेरे भाणे सरबत दा, वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली।

अति सत्कार योग साध संगत जी सर्वत्र गुरसिख माई भाई जी बहुत वड्डियां भागां वाले हो कर्मां वाले हो गुरु की कृपा बख्शिश रोजाना रोजाना प्राप्त कर दे हो। आप गुरमुख जना ने साहबां दे दरबार विच सज करके बहुत ही प्यार विच गुरु सवारे गुरु के कीर्तनियां पासों अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। जिस वेले गुरु के कीर्तनिया ने शब्द की समाप्ति की है उस वेले उन्होंने आसा राग दे विच्चों आप जिया नू अमृत बाणी दा शब्द कीर्तन सरवण करवाया है। जड़े गुरु के प्यारे कीर्तनिया सिंह साहबान जी बाणी दा कीर्तन सरवण करवा रहे सन गुरु के उस शब्द विच नाम दी महिमा है अते नाम तो बिना सब कुछ खाक हो जाण वाला है। असर राग दा शब्द है वो बचन पढ़ रहे सी पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया। वाहिगुरु अखो गज के सतनाम श्री गरीब नवाज जी दे अमृत बाचा ने जोबन है जवानी है जीव सोचता है इस जवानी विच मैं मौजा माणागा ऐश अशुरत विच बतीत कर लवांगा मैनू कोई गुरु शब्द दे जपन की लोड़ नहीं है। हो सकता है भी मेरी जवानी सदा रवे पर यह तो बात अधूरी है। तुसी बदलां दी छां वेखदे हो बदलां दी छां हुंदी है एक छिन विच इत्थे दूजे छिन विच दूर जांदी है और जदों अपने ते आउंदी है ना छां तो इउं लगदा है कि यह छां मेरे कोलों परां नहीं जानी पर उह छिन विच ही चले जांदी है। तां कहिंदे जिहड़ी जवानी है ना उह बदलां दी छां वर्गी है। बड़ा सोहना बोल लिखिया जे ध्यान दे के सुनियो कहिंदे चौंपकी जरा आंख चौंपकी जरा आंख आंख मीन अख अख चमकी ता की होया चौंपकी जरा आंख जवानी गुजर गई कहिंदे किदा बदली की छाओ थी इधर आई उधर गई बदला दी छा सी इधरों आ गई उधर चले गई है जवानी है वह लंघ जाती है। पर हां जिहड़ा जवानी विच गुरु गुरु का जाप कर लिया उहदे विच बहुत गुरु की कृपा वरतदी है। गुरु के प्यारे शब्द सरवण करा रहे सन पाव तरलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया। तुसी कईयां ने देखिया होवेगा ऐसा रवाज एक चल पिया जे जेडे अजकल दी नौजवानी वह भी कन्ना विच कुंडल पाई फिरदे ने जेडे काम नहीं सी करन वाले वो साडी नौजवानी मैनु माफ करियो जो करदी फिरदी है गुरु तो दूर जा रहे ने। पर साहब जी की अमृत बाणी के अमृत बोल देखो कहिंदे कन्ना विच कुंडल पवाला कन्ना विच कांटे पाला जेडा काम नहीं सी करन वाला वह कर रहे ने। कान कुंडलिया बस्तर ओ डलिया सेज सुखलिया मन कर बलिया जे रब ने बस्तर दिते अनुदा आनंद माण सोहणिया सेजा दित्तियां ने रब का शुकराना कर। पर एक गल चेता रखी नाम बिना माटी संग रलिया नाम तो बिना खाक मिट्टी विच रल जाना है। कान कुंडलिया बस्तर उडलिया सेज सुखलिया मन कर बलिया ते कुंडल पवा के अपने आप नू फैशन दान करके ते जदो आकड़ आकड़ के तुरदा कहिंदा मेरे वर्गा है ही कोई नहीं है इन्ना हंकार दे विच चलदा है ना भावे तुरदा गां नू होवे वेदा अपने गिट्टियां वल नू है कि मैं ठीक लगदा भावे अगे जाके डेगी जावे। इहो जे हालात बन गए ने पावत रलिया जोबन बलिया ना बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर डलिया सेज सुखलिया मन गर बलिया तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बिना ले तरन गडलिया। अंत विच कहिंदे रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया हर रस बिन सब सुवा

जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तहरत तब देह अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तहर सब हूँ। जेते बदन

शांत सुख मन आए वस्याजन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया वडे आईया। कह नानक सुन हो।